गए मशक्कत काल, नानक ते मुख जले एती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल।

दिवस रात दोए दाई दाया खिले सगल जगत चंग आईया बुरियां आईया वच धर्म हदूर करमी आपो अपने के नेड़े के दूर

पुरख परखोतम। बाणी स्यो चित लावै गो, गुर बाणी सुनत मेरा मन ध्रव्या। मन भीना निज कर आवै गो, तह अनहद धुनी बाजहे नित बाजे। नीजर तार चवावै गो,

गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवण का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षिया रहा ते देग तेग फतेह बिरद की बैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाए खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखानू सिखी दान के सुदान रहत दान बाबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदार नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु

जग और न जाहे महातम में अवतार जागर यान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिने अमृत नाम पिया ए पद्धत ते मत चूकह रे मन भेद विभेद न जान बिया प्रतच हृदय गुर अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो गुर के चरण जीव का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन में तारा कोई होआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम त्याया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावी सा सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह जिस पास बैठिया सो

जत सरी महला चौथा जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात की जय हर बंजा तिन सुन्नी दे फिर बिन नावे ओए खप खप मोए करंजा जिन हर हृदय नाम न बस्यो तिन मात की जय हर बंजा तिन सुन्नी दे फिर बिन नावे खप खप।

जप राम नाम हर माजा। हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा, रहाउ हर कीरत कल युग पद उत्तम। हर पाइए सतगुर माजा, हो बलहारी सतगुर अपने, जिन गुप्त नाम परगाजा। दर्शन साध मिलियो वड भागी, सब किल बिख गए गवाजा। सतगुर साह पाया वड दाना, हर किए बहु गुण साजा। जिनका कृपा करी जग जीवन, हर उर तारियो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लिखा समझा। जिनका कृपा करी जग जीवन, हर उर तारियो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक

0: लाज वस गोविंद दास तुहार।
1: सगल द्वार को साड़ के गए तुहारो द्वार, बहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार।
2: ਕਲਾ

डोलन तेरा खो प्रभु डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ बानी गुरु गुरु है बानी गुरु गुरु है बानी विच बानी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखो सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखो सरनाई, सो कहो टल गुर सेविया, अहलस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए, होवा सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहा दा साह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाह, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहा दा साह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाह। सत

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो।

हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा सो प्रीत लगा। एक

दुख दारु सुख रोग पया जा सुखताम न हो, तू करता करना में ना ही जाओ करी न हो, बलिहारी को तवसया।

0: कछु ना विचारन को, हर नाम बोहत बड़ो कल में पव सागर पार उतारन को। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सतगुरु सेव्या जिस पसैगत गम जानी कुल समूह समुद्र पायो नाम निवास सक्यथ जन्म का लुचर गुर परस्यो अमर प्रगास।
1: जब लौ नहीं भाग लिलार उदय तब लौ परमते फिरते बहुत आयो कल कोर समुद्र में बूढ़ थे कबू मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो।
2: ज्योत रूप हर आप गुरु नानक हायो ताते अंगद पयो तत् स्यों तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छतर गुर्राम दियो गुर्राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जन पिखो नैन।
3: गुरु गुरु गुरु करमन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समा।

0: राखिया गनका पर पुरे तह काज। श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए, राखो दास पाठ की लाज।
1: तारियो संसार माया मद मोहित, अमृत नाम दियो समरथ। पुन कीरत वंत सदा सुख संपत, हृदय अर सिद्ध ना छोड़ सथ। दान बड़ो

0: दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए।
1: सतगुर खेमा ताणिया जुग जोत समाने, अनपो नेजा नाम टेक चित भगत गाने। गुरु नानक अंगद अमर, भगत हर

0: गुरु अर्जुन पुरख परमान पार्थो चले नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारियो।
1: अंत न पावत देव सबे मुनो इंद्र महाशिव जोग करी फुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जन माहे तरी।
2: दीन भवन भरपूर रहो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई आपन आप ही उपायो सुर नर सुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुर असुर नर गण गण दर्भ खोजंत फिरे।

0: सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो उरे आदि पुरख परताखे लिखियो अक्षर मस्तक तुरे प्रगट ज्योत जगमगै तेज भूमंडल छायो परस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथरा मूरत सदा सिर लाए चित सनमुख रहो कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतरो
1: सतयुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेत तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतारथ कियो उग्र सैन को राज अपै

0: तीरथ की गोरे राम दास राखो सरनाई।
1: सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुवाए दर्शना परस आए गुरु का

नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जानमा जानमा दी कटिया सज्जना सच्चा पाते साहु सिर साहा दायसाहु जिस पास बैठे आ सोहिया सब नादा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहदाएं जिस पास बैठे आ सोहिया सब नादा वेसाहु सत्ते

कीमत मित कहीं न जाए, से जान तन जेन एक नाम मिलाए, गुरमत साचे साचा विचार, आपे वख से दे विचार, नाव की कीमत मित कही।

गुरमुख पाए रहाओ, हम मूरख मूरख मन माहे, हौ मैं विच सब कार कमाहे, गुर प्रसादी हौ मैं जाए

वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला तीजा। नाला की कीमत मित कही न जाए, से जान तन जैन एक नाम लिव लाए। गुरमत साची साचा विचार, आपे वख से दे।

0: का कूड़ कर थवा महला पहला।
1: साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सब को सत समावे ऋग कहे रहे प्रभु राम नाम देवा महसूर नय ले प्राचर जय नानक तो मखन त्रिपा जुज में जोर छली चंद्रावल कान किसन जादम पया पहार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया काल में बेद्य